0: किसी एक लाइन लो, किसी एक लाइन लो, कोऑर्डिनेटर पर सर्वर
1: Thanks.
0: Yeah, I'll just stand by.